थो रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जे उपेश बखिनिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पी खुद बचलागा चतुर्थी सरकार र संवैधानिक परिषद थापाङको संशोधन अध्यादेश जारी या त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल या त हाक्न छोगुदो थो झनि सरकार थो अध्यादेश जारी या त राष्ट्रपति या त छोगुली राष्ट्रपति आइतबार थो अध्यादेश हाक्न दुवाले त सरकार या त हेली त छोयादिगो ख मन्त्रिपरिषद मुर्ज्या थो अध्यादेश या त हाक्न सिफारिस या त छोगु सरकारी प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल ताइदिगो ख अध्याय मन्त्रिपरिषद मुर्ज्या लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा कचु झेङ्केत नेपाल भारत सरकार दोथी कुत यागु वेक्ल कनादिल मन्त्रिपरिषद मुर्ज्या भारत नाप जी टु जी पाखे खुइदो मेट्रिक टन युरिया ओ निदो मेट्रिक टन डिएपी सा न्यात कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड या त सैद्धान्तिक स्वीकृति ब्युगु दो अथे मुज्या परम्परागत बोइलर या त इलेक्ट्रोनिक बोइलर चिके त उद्योग या त कर्जा वित्त वो वायु गुणस्तरमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि याको तातुना विश्व ब्याङ्क वैगु नि निगु मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण व न्यागो मिलियन अमेरिकी डलर या अनुदान स्वीकृत यागो वेक्ल कनादिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वनिग या खुसी सिठे व सरकारी स्वामित्व या जग्गा जुगु अतिक्रमण विस्थापन याना सुकुम्बासी पिनिगु पङ्ग जेङ्केगु ताइदिगो दो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाहे छगु हस्ना जारी यासे प्रधानमन्त्री शाह सरकार या फुक्क पला नागरिक या त चिकेगु मकुसे छे या हक सक्ल या त बिगु थ्वातिका दिगु दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण लिसेन्स सुशासन युङ्कु से व सार्वजनिक सेवा प्रवास सहजीकरण यागु याना संविधान शोषण या मागुली बह बिगुदो संविधान निगरानी पुच व नेपाल कानुन समाज पाखे थन गोसागोगु संविधान संशोधन या विशेष सम्वाद ज्याजोले वक्तव्य थथे दाइतिगो ख ज्याजोले प्रतिनिधि सभा कानुन न्यायालिसे मानवाधिकार समिति या सभापति समीक्षा बास्कोता देश सुशासन युङ्केगु याना संविधान शोषण या गृह कार्य ज्याचुङ्गु नेतना दिल नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति पुष्प पसाल संविधान संशोधन या कार्यदल दिएका सरकार छु या तेङ्गु ख प्रष्ट मजुगली पार्टी प्रतिनिधि मोसोयागु यत्नादिल संविधान संशोधन कार्यदल या दुजना पञ्चुवादीमा सांसद मोहनलाल आचार्य संविधान संशोधन या विधेयक लोहने न्यायो कार्यदल सल याना विधेयक मसिद यागु कर्न तयारी जुवाचुङ्गु यत्नादिल पूर्व कानुन मन्त्री नपञ्चुवादी धुङ्कुमा नेकपा एमाले नेता अग्नि खरेल सुविचारित कथ संविधान शोषण या त झ्याकेमा थाइदिल पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी नेपाली दुगु विविधता प्रतिनिधित्व यागु नीति संसदीय शासन प्रणाली हे प्याची जुइगु नेतना दिल पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटा हिला ओङ्गु शक्ति सन्तुलन पुरान्ति या त भया पक्क तटिका झ्याउनेमा थाइदिल अथे सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण उत्कृष्ट संविधान अझ उत्कृष्ट देखे त जनस्तर तक सल याना झ्याउने मागु खेम भ्यादिल पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधान कानुन लाभ जनता कागु जुसा उङ्गु भौदोक 2324 गते विद्रोह मोजिगु थाइदिल उपराष्ट्रपति रामसा प्रसाद यादव नाप युरोपली सङ्घीय राजदूत भेरोनिक लोरेन्जम हिग लैन्चो या उपराष्ट्रपति या जियाकुइ शिष्टाचार नक्सा नाप्नादिगो दो उपराष्ट्रपति यादव नेपाल युरोपली सङ्घ दोथी या 1974 निसे स्वापु दुगुली थिथि खेले ग्वाली कालबिल जुगु नेतनादिल वेक्ल सरकार सच्ची धल या ज्या योजना पाके सुशासन पारदर्शी व लिचो लागेको सार्वजनिक सेवा प्रह या त प्राथमिकता तगु तयादिस तीव्र आर्थिक वृद्धि विशेष ब ब्युगु नेतनादिल राजदूत लोरेन्ज नेपाल यु स्वापु या त मधिक क्वाटिकेगु नेतनादिल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल शिक्षा लागे त भिङ्केत सुङ्गु त या छप्प छदि जिमागु खे भव्यादिगुदो दाँकागु विशेष मिग मन्त्रालयसँग घुसागुगु जियासोसँग थथे तयादिसे छात्रवृत्ति पारदर्शी या मागु खे भव्यादिल मन्त्री पोखरेल अस्थायी रूप निनु सार्वजनिक विधा बिगु विशेष माकत ज्या ज्याचुङ व सफुया त वयकत भिङ्केगु तयारी जुयाचुङ्गु नेतनादिल
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया या ए या सुन्धारा ओ नक्साल या निखा छे ओ हेटौडा या पिप्ले या छका छे दुगङ्क सोगुदो मुख्यमन्त्री बानिया मिग प्रेस विज्ञप्ति पिठनादिसे राज्य छुन निकाय सुशासने पछि याइगु ज्या ग्वाली यागु नेतादिगुदो वेक्ल सङ्घीय सरकार याइगु फिङ्गु ज्या प्रदेश सरकार या नाय रूप ह्याप्ले नाप नाप या उनीगु यत्नादिल। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जेनजी आन्दोलन झोले सेङ्गु सवार साधने नामे इन्धन दुरुपयोग मजुगु थागुदो मन्त्रालय सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी मन्त्रालय यागु छानबिन या झोले कर्मचारी जेनजी आन्दोलन झोले सेङ्गु सवार साधने नामे इन्धन दुरुपयोग मजुगु थागु ख। सभामुख डोल प्रसाद और्याल प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभा संयुक्त समिति सभापति नाप सल ब्याका दिगुदो मिग जुगु सल सदन या ज्याता तिसिलाका झ्याकेगु विशेष सल जुगु सभामुख अर्याल सचिवालय धागुदो सल राष्ट्रिय सभा नाय नारायण प्रसाद दाहाल उपसभामुख रुबी कुमारी नोकु लीला कुमारी भण्डारी संघीय संसदीय मु छ्यान्जे छ्यान्जे ओ समिति सचिव पिनिगु पोती दुगु ख। साजिङ सेवा प्रसारण नेपाल हापुङ्गु द प्रतिवेदन नेपाल सरकार या त ललहागुदो समिति नाय डाक्टर महेन्द्र विष्ट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसिंह त प्रतिवेदन ललना दिगु ख। प्रतिवेदन ललना कया दिसे मन्त्री तिमिलसिन्हा संस्था त बलाके त जुगु कुत या त सुबा देशना दिसे प्रतिवेदन या फिङ्गु पछि या त छेलेगु नेतना दिल। प्रतिवेदन ल लना दिसे नाय विष्ट रेडियो नेपाल ओ नेपाल टेलिभिजन तिथि विषय कुला दिगु ख। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली भूमि लिपुलेख जुया कैलाश मानसरोव यात्रा न्याकुगु चीन ओ भारत दतुया सम्झौता प्रति आपत्ति पोङ्कुगुदो पार्टी केन्द्रीय ज्याकु सानिपा मिग चुङ्गु मुज्या कैलाश मानसरोवर यात्रा न्याके त भारत चीन यागु सम्झौताप्रति आपत्ति पोङ्कुगु मुज्या लिपा नेता उदय शमशेरवाना थाइदिगु ख। निशोधनी से मारवाडी सेवा समिति नियन्त्रणीय कया तगु पशुपति गौशाला धर्मशाला या फुक्क स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोष या हे जुइगु उच्च अदालत पाटन कोस्युगुदो उच्च अदालत पाटन या न्यायाधीश पी खड्गबहादुर केसी ओ रमेश प्रसाद गेवाल या मङ्का इजलास ए जिल्ला अदालत या पशुपति क्षेत्र विकास कोष या स्वामित्व या पशुपति गौशाला धर्मशाला या फुक्क जग्गा जमिन मारवाड सेवा समिति या मोहानी हक मधैगु कोच्युगु ख। थोन हने ए जिल्ला अदालत गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष या स्वामित्व जुसिगु कोचिना लिपा मारवाड सेवा समिति न हाक्न उच्च अदालते पाटन वङ्गु ख। सरकार प्रेस स्वतन्त्र नागरिक सूचना हक ओ संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध दुगु प्रधानमन्त्री या सचिवालय धागुदो प्रधानमन्त्री बालिन शाह या सचिवालय मिग छगु प्रेस नोट जारी यासे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद या ज्याकु परिषद दुनि मिग सञ्चार कम्या त भिडियो क्यात पङ्ग यागु धैगु भूकम्पति ध्यानशाला कागु धासे थथे धागु ख। सुरक्षा ओ व्यवस्थापन नाप स्वागु सामान्य प्राविधिक विषय या त प्रेसे अङ्कुश तगु धैगु हिना पिना मया त न सचिवालय इनापियागुदो। सर्वोच्च अदालत व्यवसायी दीपक भट्ट या त थुन्या तगु बारे याक्न थर्तुके त सिधेक निपेगो दुनी अदालते झने हेत उजुगुदो व्यवसायी दीपक भट्ट या कलामेजु आयुष्मान नेपाल दारिय नादिगु बन्दी प्रतिशिकन रुटे सर्वोच्च अदालत मिक सुनवाई यासे थथे उजुगु ख। वा या हुनी बिपी राज मार्ग बामलागु लकस बोलङ्गुली यातायात दुगुगुदो जिल्ला प्रहरी ज्याकु धुली खेल थो राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे पलाञ्चोगे नमुबुद्ध नगरपालिका या कुटुन्जे या चौकी डाँडा निसे सिन्धुलिया नेपाल थोक तक सडक खन्द्रे आवागमन टिगु ख।
निजी बोनिकुथी सञ्चालक पिन्स सोनी गया थिति खुसी सिथे लिसे जोखिम जागु थासे चोङ्गु सुकुम्बासी बस्ती खाली याकुबले प्रभात जुपी समुदाय मस्ते गु बोनी गुली रचनात्मक ग्वाली यागु प्रतिबद्धता पुङ्कुदो निजी लिसे आवश्यक विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सुने नाय कृष्ण प्रसाद अधिकारी उच्च शिक्षाले लिसे माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसाने नाय शुभराज शर्मा राष्ट्रिय निजी लिसे आवश्यक विद्यालय एसोसिएसन एम प्याप्सन एसोसिएसन अफ प्री स्कुल एसोसिएट एपोर्ने नाय

क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, ये एक गहरा और हकीकत पर मबनी जुमला है। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी गैर यकीनी है, कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। इंसान मंसूबे बनाता है, ख्वाबें देखता है, मगर ज़िंदगी हर वक्त एक ही तरह नहीं रहती। कभी खुशी, कभी गम, कभी आसानी, कभी मुश्किल, यही इसका मिजाज है। ज़िंदगी आर्जी है, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए जो भी वक्त हमारे पास है, हम उसे ज़ाया न करें। ख़ास तौर पर वालिदैन, उनकी क़द्र ज़िंदगी में ही करनी चाहिए। अच्छे आमाल और दूसरों के साथ हुस्न सलूक ही असल सरमाया हैं। ये जुमला हमें मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि बेदार करने के लिए है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखें। अब इसी जुमले पर मुश्तमिल एक मुकम्मल नज़्म पेश खिदमत है संदली अहमद की आवाज़ में, जिसका मुकम्मल बोल है, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, माल व दौलत ये तेरी जवानी, चार दिन की है बस ज़िंदगानी। समाप्त फरमाएँ।

लसो फ्याफुल्ला तिनी मजुश्रीसम्म त 2862 तालु दुगुलाला छेपाचुई सेकु विक्रमसम्म 2083 साल वैशाखलाला निचुई सेङी मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेनमुला सूर्य मोक्तान युल्चोहोर रामचन्द्र पौडेल से संवैधानिक सेङजाङला गे कर्तव्य याङतामथेन गे विधि सम्बन्धी लगेक्ष संशोधन अध्यादेश 2083 तिनी जारी ला छुपमला सरकार से चो अध्यादेश जारी लाबारी युल्चोहो द सिफारिसलामा मुसाइनन् युल्चोहो पौडेल से उहाँलाई कुनो अर्थात दिने रे आइतबार कुनो दिपेन विचार लाबा हिन्ना कि विशेष सरकार द याइसी पुइब मुसाइनन् दिपेन तिलमट्टी बब्लोन सेङजाङला चिसाङसे थिए अध्यादेश त जस्तोला तस्तो युल्चोहो द सिफारिसलासी पुइब मबा चुनौट गोङरी सरकार से संघीय संसदलाई गोर्गिनुन् सदनलाई ह्वाल चुनुन लाला निचुई से ब्रेक हुनु सङ्गबारी युल्चोहो रामचन्द्र पौडेल द सिफारिस लाबा निर्णय लाबा मुला तिनी टिप ब्लोन सेङजाङला चिसाङसे संघीय संसदलाई गोर्गिनुन् सदनलाई ह्वाल चुनुन वैशाखलाला निचुई से ब्रेक हुनु दिनीलाई निङ्यामा टिबारी मोइजन लाबन युल्चोहो पौडेल द सिफारिस लाबा निर्णय लाबा मुला विषय सरकारलाई सुङ्गुन थेन स्याब्लोन सस्मित पोखरेल से सुङ्छु बहिन्ना काइब्लोन भालेन्द्र साहसे लोबोन्थेन कर्मचारी थुम्री मुबा ग्लेठिम दल्दा प्रभाव द भ्याङमारी ठिम सोदो ब्याङ्गमला विशेष संक्षेप मला काइब्लोन साहसे लामन दिङ्गा चाहिन्से लोबोन सङ्गठन थिएन कर्मचारी संरचना गदे ग्लेठिम दल्ला स्लिपर सेल राङमान धोबन खापासे योग्यता थिएन क्षमता बिमाइनुन पहुँच थिएन ग्लेठिम दल्ली हुवाङबा द प्राथमिकता पिनमान खापा ठिमलाई फेरि दान्दे हिलबाला विश्वास चाङ नतामन खापा मला विषय संक्षेप हिन्न काइब्लोन साहसे ब्रिबडोबा लोपा थिएन कर्मचारी थुम्री ग्लेठिम लाबारे आपिनमा निर्णय सङ्गठन सोबारे आपिनमा बिमाइनुन ज्याब ठिम सोबारी लादोबा म्राङबा मला विषय संक्षेप मला नियुक्ति सरुवा थिएन बडुवारी खाजिबैनुन ग्लेठिम दल डी मोबासे बिमाइनुन विधि क्षमता थिएन दक्षता द आधार सुबारी खाम दल विषय काइब्लोन साहसे संक्षेप मला काइब्लोन साहसे सरकार से तोजी विषाम अध्यादेश ग्यामनुन ठिम सोसे हिउल्दा ज्याब सोबारी तयारी लासेन मला विषयनुन संक्षेप मला सरकार से समस्या मोबा सहकारी री टाङ्गा थान्बा गदेता खाबा जेठलाला गिक्सा साता हिंसे टाङ्गा याइसे पिन्छेला त बमला निब वैशाखलाला कुकुने हिंसे गेलाबारी तीबा समस्या मोबा सहकारी व्यवस्थापन समिति से सहकारी री टाङ्गा थान्बा गदेला विवरण रूप से बचत लाबा टाङ्गा याइसे पिनबारी छे बहिन्न समिति से लाबा अध्ययन अनुसार समस्या मोबा सहकारी ला तुङ निश्चुई से ढु बचत लाबा मिला छो आछो अर्ब ब्लिचुई से ढु बचत लाबा टाङ्गा याइसे पिन्छेला त बमला लाख घाबीमा च्याङना टाङ्गा बचत लाबा दा जाजा बचतकर्ता थिएन लाख घाबीमा लामा टङ्गा टाङ्गा बचत लाबाका दिँदा ग्रेन बचतकर्ता विषय बुङ्गेरी बोला बमला चुनुन गुङरी सनम व्यवस्था सहकारी थिएन प्राङ्गो निवारण ब्लोन प्रतिभा रावल चाहिँ बचत लाबा टाङ्गा याइसिपिनमा गे थुम्से जिनमा चाहिँ दारम योनन टाङ्गा याइसिपिन छेल मलाई विषय सुङ्क्षेप मोला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से जोखिम पुइसे सडक र सवारी साधन सङ्गबारे आपिन्ना मी थिएन सवारी साधनलाई सुरक्षा सुनिश्चित लसी पिनबारी बेनान जोङ प्रशासन गेदिन्दा निर्देशन पिन बोला प्राधिकरण से जोखिम मुबा ग्लागदेरी सवारी साधन सङ्गबारे कासाइनुन सङ्गबारे माइसम ड्राइभर थिएन सवारी साधन द कारबाहीलाबारी निर्देशन पिन बोला तिलमा मुना काभ्रे जोङला रोसी सुङरी भाल खाबा लिचा जोखिम तबारी खाम्बासे थे ग्याम्रे आनीबारी मोइजन लामा सुताइनुन् आङ्यान्ना निबा गोर्घा सवारी साधन थिएन थेरी मुबा मिगदे फसप्ताबा मुबा थेराङलासी फसप्ताबा मेन्दो भेचुइसे कु मिला उद्धार लादब मुबा चुनुन गुङ्ग्री तिलाई रे गाछा हिन्से ग्रेन नाम्ताइसी टिबासे ढुइनीमा युल्ला लामान गारी मुबा राजमार्ग गदे नुङ्न लाब मुला तिल्मुना इलामजोङला रोङ गाउँपालिका ढुला सकलपुर रि मुबा कच्ची सडक घ्याम काभ्रे नवबुद्ध नगरपालिका ढु चौकी गाङ थिएन रोसी गाउँपालिका निस्ला घुमाउने थिएन 482 रि मुबा बिपी राजमार्गला सडक घ्याम नुङ बमुला बेसे मियो प्रहरी गेदिमला सुङबन थिएन डिआइजी अभिनारायण काफले से सुङ्छु बहिन ग्रेन नाम ताइबा दुईरी लामा जोखिम ताबारी खाम्बासै नुङबा थिएन तिलो गिक्से चेकेन सेगमान खाबा राजमार्ग घ्याम ब्रातोसाम सुरक्षित थिएन सावधानता सिब्राबारी प्रहरी से महिजनला बमुला ग्रेन ठिमखाङ से सुकुम्बासी बस्ती खाली लानुन तोबा ठिम थिएन प्रक्रियाला ताम्रे निर्णय लाबा कागजात रिबारी आदेश पिनमा मोला ठिम्पोन छेन्पो सुनिल कुमार पोखरेल यागर इजलासै तिलमा गोर्घा ताम गदे सुकुम्बासी बस्ती खाली लाबारी निर्णय लाबाला कागजात रिबारी आदेश पिनमा हिन्ना नेपाल सरकार ब्रोन्सेङजाङ से निर्णय लासी लागु लाबा शासकीय सुधार सम्बन्धीला ग्यार्जकी बुदाला दस्तावेजला बुदा नम्बर कुचुसे गिग्री मोबा अनुसार थिएन नेपाललाई हिल ठिम आवासलाई याङताम
काम सम्बन्धी थिम 2075 थिमखाङला आदेश श्री जारी लाभा निर्देशन दा तेन्दोबा बाध्यात्मक थिम थेन प्रक्रियाका देला ताम्री निर्णय लाभा कागजात गति आदेश पिन्छी रिपमुला स्मार्ट टेलिकम प्रालीला संख्यान सर्वेश जोशीदा ठगिलासी अपराधिक विश्वासघात लाभा लक्ख छोरी प्रहरी से चुङमुला नेपाल प्रहरीला मियो अनुसन्धान ब्युरो से जोशी से बैमान नसै नेपाल सरकार द लुभा उद्देश्य ठोसी ठगिलाबा तिन अपराधिक विश्वासघात लाभा लक्ख छोरी चुङमा हिन्ना जोशीदा याम्बुजोङ ठिमखाङला अनुमति रि चुङसे अनुसन्धान लाभनमुला विषय ब्युरो से पाङमुला स्मार्ट टेलिकम प्राली से नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्याम 2070 साललाई बैशाख कुनु दूरसञ्चार सेवा सिंहमारी तिन आधारभूत टेलिफोन सेवा पिनबारी विषय अनुमति पत्र किन्बोबा सुकुम्बासी त थानबारी विषय शोभा भक्तपुरलाई खरिपाटी रि मुबा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तालिम केन्द्र रि अस्थायी शिविर रि थानबा सुकुम्बासीका देला लुई जाँचलासी मानलाबा तेन जाजकोलाका देता ब्रिबडोबालो परिवाङ बमला तिनमा हिंसे लुई शिविर सङ्से शिविर रि मुबाका देला लुई जाँचलाबा लिच्छा मानपिनमा हिन्ना भक्तपुर अस्पतालला डाक्टर नर्स प्राविधिक टोली तिलगङ्गा मी अस्पताललाई ग्रिनगन डाक्टरका देशे शिविर सङ्घमा गार्जिकेक चाहिँ मेन्दुङाचुई भ्रेला लुई जाँच लाभमुला विषय जन जनस्वास्थ्य अधिकृत थिएन गेदिमला ग्रेन्पो अञ्जना खड्का से सुङमामुला बैतडी जोङला सिगास गाउँपालिका गिक बसकोट विभाग लारी सानाम लोपखाङ ठङबामुला सानाम बोन्दा वारा भुरिन सानाम टिमलाई ज्ञान पिनबारी विषय लोपखाङ ठङबा हिन्ना दिगो आम्दानीलाई जामेकोला जामेकोला उद्यमीका दिँदा सशक्तिकरण लाभा परियोजना नगरी जलवायु मैत्री सानाम लोपखाङ सेङ्बा हिन्ना विषय परियोजनालाई ग्रेन्पो भोपाल बोहरा से सुङसेपमुला परियोजनालाई ग्रेन्पो बोहरा से सानाम लोपखाङ से सानाम बोनगा दिँदा खु खेती सम्बन्धी परामर्श पिम्बारी थिएन बालाङ बुलुङ्गदे साइबरी खाम्बा तरिका लोप्से उत्पादन लिन लाभा उद्देश्य किन्बामुला विषय सुङसेपमुला ओसेम जलथेन मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई अनुसार तिनी कोशी थिएन गण्डकी प्रदेशलाई तिलाई ग्लागदेरी थिएन छ्यान प्रदेशलाई लामान ग्लागदेरी मुठेङमा तिब्लिङ टाबारी खाम्बाला छ्याम्रे नाम्थेन ग्लिङ ताइबारी खाम्सेलामुला विषय पाङबामुला चुराउनु नसी तिनी मुना कोशी मधेश बागमती थिएन गण्डकी प्रदेश रे मौसम पोसी नाम ताइबारी खाम्सेलामुला विषय महाशाखा से पाङबामुला कोशी मधेश थिएन बागमती प्रदेशलाई तिलाई ग्लागदेरी विषाम मुठेङमा तिप्लिङ टाबारी खाम्बा थिएन नाम ताइबारी खाम्सेलामुला विषय महाशाखा से पाङबामुला चुनु साङ्गुरका देला छ्याम छ्याम्री तिनी द तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसेको लसो फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झा सँग सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। सरकार संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन बैसाख 28 गते आह्वान करबाक राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयलक अछि। आई बैसल मंत्री परिषद बैठक से संघीय संसद के दुनू सदन के अधिवेशन बैसाख 28 गते दिन के 2 बजे विशेषण आह्वान करबाक लेल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिश करबाक निर्णय कयने सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल के जानकारी देलनि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संवैधानिक परिषद काल कर्तव्य अधिकार आ कार्यविधि पहल संशोधन अध्यादेश 2083 जारी कयलनि अछि। सरकार ई अध्यादेश जारी कर राष्ट्रपति समक्ष कयने सिफारिश राष्ट्रपति पौडेल रवि दिन पुनर्विचार कहित फिरता पठौलाक बाद काल्हि पैसल मंत्रिपरिषद बैठक से ओ अध्यादेश के जेहने के तेहने राष्ट्रपति समक्ष फिर से सिफारिश कयने छल। सर्वोच्च अदालत सुकुम्बासी बस्ती खाली कराब अवलम्बन केने विधि प्रक्रिया के विषय में निर्णय सहित के कागजात आना आदेश दिलक। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरिल के एकल इजलास से सोम दिन 5 बूंदा में सुकुम्बासी बस्ती खाली कराब लेल कायल गेल निर्णय सहित के कागजात आना के आदेश दिलक। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद से निर्णय भ लागू कायल गेल शासकीय सुधार संबंधी 100 बूंदे दस्तावेज के बूंदा नंबर 91 में उल्लेख भेल बमोजिम तथा नेपाल के संविधान आवास के हक संबंधी ऐन 2075 अदालत के आदेश में जारी निर्देशन अंतर्गत अवलम्बन कर वाला बाध्यात्मक विधि प्रक्रिया को कनखुना का अवलम्बन कायल गेल अछि। ओहि संबंधी निर्णय सहित के कागजात सब आदेश मार्फत मांग कायल गेल अछि। संघीय अदालत खारी करायल गेल बस्ती से हटायल गेल बहिर्गमन भेल परिवार के पुनर्वास दैनिक खान पान आ ज्येष्ठ नागरिक रोगी अपांगता भेल व्यक्ति के दवाई सर सफाई एवं धियापुता के शिक्षा संबंधी वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानवाधिकार की अवस्था की रहल अछि ओहि संबंध में कायल गेल प्रबंध के वस्तुपरक विवरण मांग कयलक अछि। मस्जिद अंसारी समेत नेपाल सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय समेत विपक्षी राय के दायर कयल गेल रिट निवेदन में अदालत दुनू पक्ष के विचार विमर्श के लिए बैसाख 23 गते के लिए बजौलक अछि। संगे आधार कारण सहित बाट के म्याद बाहक सूचना म्याद पौने समय से 15 दिन भीतर महानिदेशकता के कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश कर लेल कहने अछि। सरकार समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ता के रकम जेठ पहिल हफ्ता से फिरता करत। गत बैसाख 9 गते से काज शुरू भेल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सहकारी बचतकर्ता के आवश्यक विवरण संकलन का बचत रकम फिरता करबाक तैयारी कयलक अछि। समिति कने अध्ययन हिसाबे समस्याग्रस्त सरकारी सहकारी के लगभग 76,000 बचतकर्ता के लगभग 46 अरब बचत फिरता कर पड़त जाय मध्य अधिकांश छोट बचतकर्ता सब रहल। समिति जनौलक अछि 5 लाख से कम रकम बचतकर्ता के छोट बचतकर्ता आ 5 लाख से अधिक रकम बचतकर्ता के बड़का बचतकर्ता के रूप में वर्गीकरण कयल गेल अछि। जमा 76,000 मध्य 5 लाख से अधिक बचत करय वाला जमा 18,000 रहल। समिति के सदस्य सचिव रविन्द्र ढकाले के जानकारी देलनि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल बचत फिरता के लेल बहुतो काज भ चुकल आ फिरता कर के काज शुरू हेबाक जानकारी देलनि। समिति अपन कार्यविधि तय करत बचत फिरता कार्य आरंभ करबाक आ कर्जा वसूली में प्राथमिकता देवे वाला नीति अवलम्बन कयल जात जनौलक अछि। समिति मांग दावीकर्ता बचतकर्ता के बचत फिरता करबाक कार्य आवय वाला जेठ के पहिल हफ्ता से आरंभ होयबाक आ मांग दावी छूट भेल बचतकर्ता के पुनः मांग दावी करबाक समय आवय वाला साउन के पहिल हफ्ता में खुला कयने जनौलक अछि। समिति के हिसाबे नेपाल सरकार से चक्रीय कोष में विनियोजित रकम संबंधित समिति के कोष से नई पुग भेला पर साप्ती रूप में मात्र खर्च कायल जात स्पष्ट कायल गेल अछि। समिति के सदस्य सचिव ढकाल कर्जा वसूली के लेल समिति कानून बमोजिम कठोर नीति अवलम्बन करबाक जानकारी देलनि। संघीय राजधानी काठमांडू के पूर्वी पहाड़ी आ तराई के जिला संग जोड़ वाला बीपी राजमार्ग में रात के समय में सवारी साधन आवागमन में रोक लगौलक अछि। मंगल दिन बैसल जिला सुरक्षा समिति के बैठक से आइए से लागू हेबा सन दोसर सूचना जारी नहीं भेल धर के लेल 5 बजे से लक भिनसर 5 बजे धरि बीपी राजमार्ग निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में रोक लगेबाक निर्णय कयलक अछि। काबड़े प्लांचो के प्रमुख जिलाधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी आई बैसल जिला सुरक्षा समिति के बैठक से बीपी राजमार्ग के भकुंडे बेसी खुरकोर सड़क खंड में दोसर सूचना जारी नहीं भेल धर के लेल यातायात संचालन में पूर्ण रूप में रोक लगेबाक निर्णय कयने बतौने छथि।
ओ राति के समय में भ सकबाक संभावित जोखिम के मद्देनजर करैत यात्रु आ सवारी साधन के सुरक्षा के लेल अनिश्चितकालीन रोक लगाएल गेल जानकारी देलन। समिति तोकने समय वाहक सेहो वर्षा रोशी नदी में आबि सकबाक बाढ़ आ मौसम के अवस्था देख के आवश्यकता के आधार पर कोनो समय अल्पकालीन रूप में सड़क बंद कायल जा सकत अछि बतौलन। सोम दिन के घटना तथा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के निर्देशन के ध्यान में राखि कर काभरे पलांचौक आ सिंधुली के प्रमुख जिलाधिकारी बीच भेल टेलीफोन संवाद के आधार पर यह निर्णय लेल गेल अछि। निर्माणाधीन बीपी राजमार्ग में वर्षा के कारण चालू आर्थिक वर्ष में अखन धरि दर्जनों बेर सड़क अवरुद्ध भ चुकल अछि। जिला सुरक्षा समिति एहिसँ पहिनहु 4 बेर राजमार्ग बंद करा चुकल अछि। मध्य प्रदेश में पुनः सरकार परिवर्तन के खेल शुरू भेल अछि। मध्य प्रदेश सभा में रहल चारिम बड़का दल के रूप में रहल जनमत पार्टी संसदीय दल के नेता परिवर्तन कलक अछि। ये पार्टी मध्य प्रदेश में अपन संसदीय दल के नेता चंदन कुमार सिंह के तुकने जनौलक अछि। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत राउत ऐसे पहिने संसदीय दल के रूप में रहल अर्थमंत्री महेश लाल यादव के ठाम सिंह के अन्य छथि। नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता कृष्ण प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनल सरकार में दोसर वरीयता में जनमत पार्टी के अखन के संसदीय दल के नेता महेश प्रसाद यादव अर्थमंत्री रहल छथि। देश के सबसे अधिक सामान आयात हो वाला बीरगंज भंसार के सेवा प्रवाह एक हफ्ता से प्रभावित भेल अछि। भंसार बिंदु में आव वाला सामान में अनिवार्य अधिकतम खुदरा मूल्य MRP कार्यान्वयन कर चाहला पर एक हफ्ता से अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ औद्योगिक कच्चा पदार्थ तरकारी तथा फल फूल वाहक अन्य सामान तथा भंसार जांच पास हो बनि सकल अछि। गत बैसाख 15 गते से आयात तथा निर्यातकर्ता भंसार जांच पास प्रक्रिया में सहभागी नहीं भेल अछि, जे के कारण भारत के रक्सौल दिस मालवाहक सवारी साधन रोकक क्रम बढ़ रहल अछि। वीरगंज भंसार कार्यालय के सूचना अधिकृत उदय सिंह बिष्ट दैनिक 200 से अधिक मालवाहक सवारी साधन थपायल गेला से औसत में 1400 से हाराहारी में सवारी साधन जाँच प्रक्रिया रोकायल गेल बतौलन। गत बैसाख 15 गते से आयातित एवं निर्यातित कायल जाय वाला सामग्री के अधिकम खुदरा मूल्य MRP लागू करबाक निर्णय भेल छल, मुदा ई प्रावधान के आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता विरुद्ध जनवित आबि रहल अछि। वीरगंज के एकीकृत सुरक्षा भंसार जांच चौकी के व्यवस्थापन के जिम्मेवारी पौने TRS हिमालय लर्जी पार्क प्राली के इंचार्ज गणेश धिमिरे भंसार जांच पास नहीं भेला से भारतीय सड़क में सेहो मालवाहक सवारी साधन के लाइन लागल बतौलन। वीरगंज भंसार कार्यालय दैनिक 50 लाख 60 करोड़ टका धरि राजस्व संकलन करैत आयल अछि। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम इस समस्या लंबा समय धरि जो रहत राज्य व्यवसायी दुनू के फायदा इससे नहीं हैत, जै के कारण आवश्यक समन्वय इसके निष्कर्ष लगेबाक लेल अनुरोध सेहो कयलनि। आ मौसम समाचार, पहाड़ी आ हिमालय भूभाग में साधारणतः बादल लागत आ तराई में आंशिक बादल लागल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे आई कोसी गंडकी प्रदेश के किछ स्थान तथा बाकी प्रदेश के किछ स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा के आ हिमपात के संभावना अछि। अहिना के आई राति कोसी मधेश बागमती आ गंडकी प्रदेश में साधारणतः बादल लागत आ बाकी प्रदेश में आंशिक बादल लागत। कोसी मधेश आ बागमती प्रदेश के किछ स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा होयत त बाकी प्रदेश के एक दो स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। आब खेल समाचार, ICC पुरुष विश्वकप क्रिकेट लीग दू अंतर्गत के त्रिकोणात्मक श्रृंखला में नेपाल ओमान ऊपर शानदार जीत हासिल कलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में आई भेल खेल में नेपाल ओमान ऊपर 81 रन से विजयी जीत हासिल कलक अछि। जीत के लेल 257 रन के लक्ष्य पाछू करैत ओमान 39.5 ओवर में 175 रन में ऑल आउट भेल छल। नेपालक लेल गुलशन झा 5 विकेट लेले, तहिना संदीप लामिछाने, करण केसी, दीपेंद्र सिंगेरी आ नंदन यादव समान 1-1 विकेट लेलथि। ऐसे पहिने टॉस जीत के पहले बैटिंग के लिए नेपाल 39.5 ओवर के समाप्ति पर 100 विकेट के क्षति में 256 रन बनौने छल। इनिंग के शुरुआते में विनोद भंडारी शून्य में आउट भेलाक बाद नेपाल दबाव में पड़ल छल। ओहि पश्चात आसिफ शेख, अर्जुन कुमार दोसर विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी करैत टोली के संभालने छलथि। आसिफ शेख उत्कृष्ट बैटिंग करैत 94 रन बनौलथ, ओ 7 चौका 5 छक्का प्रहार कलथ। अहिना अर्जुन कुमार 48 रन के योगदान दिलथ। मध्यम क्रम में दीपेंद्र सिंह एरी 33 रन जोड़ने छलथि। अंतिम दिस आरिफ शेख आक्रामक बैटिंग करैत 24 बॉल में 43 रन बनौलाक बाद नेपाल सम्मानजनक स्कोर बनाबे में सफल भेल छल। ओमानक लेल नदीम खान 3 विकेट लेलथि, शकील अहमद आ हसनैन शाह समान 2-2 विकेट लेने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एटलांटिक महासागर के क्रूज जहाज में हांटा वायरस संक्रमण के दोसर संक्रमण पुष्टि कने क्रूज जहाज ऑपरेटर ओशन वाइड एक्सपीडिशन विज्ञप्ति मार्फत जनौलक अछि। महिला यात्री में बीतल संक्रमण पुष्टि भेल जनबैत ओ संक्रमित महिला के अप्रैल 27 में मृत्यु भ चुकल बतौलन। एक दंपति आ एक जर्मन नागरिक के संगे दूटा चालक दल के सदस्य रोगी पड़लाक बाद संक्रमण के आशंका में हुनका सबके लगभग 150 गोटे यात्रु जहाजे में रहल जनाल गेल अछि। अखन पुष्टि भेल हांटा वायरस संक्रमित यात्री बेलायती नागरिक रहल आ अखन जहाज सँ निकाल कर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्वास्थ्य उपचार भ रहल जनौलक अछि। जहाज में रहल दू गोटे चालक दल के सदस्य में तीव्र श्वास प्रश्वास लगायत लक्षण देखा पड़ला सँ दुनू गोटे के तत्काल चिकित्सा सेवा आवश्यक रहल विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। अखन संक्रमण के लक्षण भेल अन्य व्यक्ति पहचानक लेल स्वास्थ्य परीक्षण कह रहल बताल गेल अछि। हांटा वायरस एकटा वायरस के समूह अछि जे व्यक्ति के गंभीर रोग लबैत अछि आ विश्व स्वास्थ्य संगठन ई जनौलक अछि। संक्रमण सामान्यतः संक्रमित के पेशाब तथा थूक के संपर्क सँ एक मानव सँ दोसर मानव में सड़ित अछि जनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बैसाख 28 के लिए आह्वान। संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश 2083 राष्ट्रपति द्वारा जारी। विद्यालयों में दल का झंडा और कर्मचारियों में दल का झोला निषेध करने से पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का बयान। समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की राशि जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने की सरकार की तैयारी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश। और चीन के हुनान प्रांत में पटाखा कारखाने में विस्फोट, 26 लोगों की मौत, 61 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन इसी बैसाख 28 गते सोमवार दोपहर 2 बजे के लिए आह्वान किया है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने 28 गते दोपहर 2 बजे सिंह दरबार स्थित संघीय संसद भवन में दोनों सदनों का अधिवेशन आह्वान किया। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हितेश कुमार शाक्य ने यह जानकारी दी। इससे पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक ने बैसाख 28 गते दोपहर 2 बजे अधिवेशन आह्वान करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश की थी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि प्रथम संशोधन अध्यादेश 2083 आज जारी किया है। सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष की गई सिफारिश को राष्ट्रपति पौड़ेल ने रविवार पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के बाद कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने उसी अध्यादेश को ज्यों का त्यों पुनः राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिश किया था। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में दल का झंडा और कर्मचारी तंत्र में दल का झोला प्रतिबंधित करने से विद्यार्थियों को और कर्मचारियों के अधिकार नहीं छीनेंगे, बल्कि इससे पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से अपनी धारणा सार्वजनिक करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि वर्षों से जड़ जमाए विद्यार्थी और कर्मचारी तंत्र का पाठीकरण देश की व्यवस्था को ही कमजोर कर चुका है और इस तरह झंडा तथा झोला पर प्रतिबंध लगाने से उनके अधिकार और पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा शिक्षण संस्थान और कर्मचारी तंत्र से राजनीति हटाने की बात संगठन न बना पाने के कारण नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और कर्मचारियों की गरिमा बचाने के लिए है। सरकार ने समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की रकम जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने का निर्णय लिया है। बीते बैसाख 9 गते से काम शुरू किए गए समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ने सहकारी और बचतकर्ताओं का आवश्यक विवरण संकलन कर बचत रकम वापस करने की तैयारी की है। समिति के अध्ययन अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी के करीब 76,000 बचतकर्ताओं की लगभग ₹46 अरब बचत वापस करनी है। इनमें अधिकांश छोटे बचतकर्ता है, ऐसा समिति ने बताया है। 5 लाख से कम रकम वाले बचतकर्ताओं को छोटे बचतकर्ता और 5 लाख से अधिक रकम वाले बचतकर्ताओं को बड़े बचतकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुल 76,000 में से 5 लाख से अधिक बचत करने वाले केवल 18,000 है, यह जानकारी समिति के सदस्य सचिव रबीन ढकाल ने दी। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने बताया कि बचत वापसी के लिए अधिकांश काम पूरा हो चुका है और अब रकम वापस करने का काम शुरू होगा। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने जोखिम युक्त सड़कों पर सवारी आवागमन बंद कर यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने जोखिम वाले स्थानों पर आगमन प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और स्वामियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को समयानुकूल पुनरावलोकन करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के पुनरावलोकन और नई दिशा देने के लिए प्राध्यापक डॉ. बालचंद्र लुइटेल के संयोजकत्व में एक कार्यदल गठन किया है। मंत्रालय ने बताया कि बदलते परिवेश के अनुसार पाठ्यक्रम को समय सापेक्ष बनाने तथा नैतिक शिक्षा लगायत विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से कार्यदल गठन किया गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकारी कुरियर सेवा 19 जिलों में संचालन में आ गई है। कार्यक्रम शुरू होने के बाद अब तक 3,131 पासपोर्ट संबंधित जिलों तक पहुंचाए गए हैं। डाक सेवा विभाग की महानिदेशक मनमाया भट्टराई पंगेनी ने यह जानकारी दी। इनमें से 667 पासपोर्ट सेवाग्राहियों के घर तक पहुंचाकर वितरित किया जा चुका है। सर्वोच्च अदालत ने सुकुम्बासी बस्ती खाली कराने की प्रक्रिया और विधि से संबंधित निर्णय के दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेल की एकल पीठ ने सोमवार 5 बिंदुओं में सुकुम्बासी बस्ती खाली कराने के निर्णय से संबंधित दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी पूछा है कि खाली कराए गए बस्ती से हटाए गए परिवारों के पुनर्वास, दैनिक भोजन, वरिष्ठ नागरिक, बीमार और अपांग व्यक्तियों के उपचार, स्वच्छता तथा बच्चों की शिक्षा जैसी न्यूनतम मानव अधिकार संबंधी व्यवस्थाएं क्या और कैसी हैं, इसका वस्तुनिष्ठ विवरण भी प्रस्तुत किया जाए। जिला अदालत काठमांडू ने व्यवसायी शेखर गोलछा को जांच के लिए हिरासत में रखने की अनुमति न देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश मोना सिंह की पीठ ने आज गोलछा को हिरासत में रखकर जांच करने हेतु म्याद बढ़ाने की अनुमति न देने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के साथ ही व्यवसायी गोलछा रिहा हो जाएंगे। व्यवसायी गोलछा को प्रतिभूति और बीमा संबंधी कसूर में जांच के लिए पुलिस ने इसी बैसाख 14 गते गिरफ्तार किया था। रक्षा मंत्रालय के चालू आर्थिक वर्ष के त्रैमासिक लक्ष्य के अनुसार 80% से अधिक प्रगति देखी गई है। त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवं मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की आज की बैठक ने कोसी कॉरिडोर सड़क परियोजना, कर्णाली सड़क परियोजना और बेनीघाट आरू घाट लार्के भंज्यांग सड़क परियोजना की 100% भौतिक प्रगति होने की जानकारी दी गई है। इसी प्रकार काठमांडू तराई मधेश द्रुतमार्ग सड़क परियोजना की 34.4%, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय की 35.73% और बंकर से बैरक परियोजना की प्रगति 23.50% रही है, ऐसा मंत्रालय ने बताया। बैठक में प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण में ट्रैक खोलने के लिए आवश्यक बजट की कमी के कारण क्षमता के अनुसार काम नहीं हो सका। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य चीन के हुनान प्रांत स्थित लियुयांग शहर में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 61 लोग घायल हो चुके हैं। यह धमाका सोमवार शाम करीब 4:40 बजे हुनान प्रांत के लियुयांग में स्थित हुआ शेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी की एक वर्कशॉप में हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर पटाखों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चीन के राष्ट्रपति सी चिनपिंग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चिनपिंग ने लापता लोगों का पता लगाने और घायलों को तत्काल इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय अधिकारी विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार घटनास्थल पर लगभग 500 बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं पास में स्थित दो बारूद के गोदाम से उच्च जोखिम का हवाला देते हुए खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बैसाख 28 के लिए आह्वान। संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश 2083 राष्ट्रपति द्वारा जारी। विद्यालयों में दल का झंडा और कर्मचारियों में दल का झोला निषेध करने से पेशागत स्वतंत्रता और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का बयान। समस्याग्रस्त सहकारी के बचतकर्ताओं की राशि जेठ के पहले सप्ताह से वापस करने की सरकार की तैयारी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा सभी जिला प्रशासन कार्यालयों को निर्देश। और चीन के हुनान प्रांत में पटाखा कारखाने में विस्फोट, 26 लोगों की मौत, 61 से अधिक हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
4: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
5: *14#डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेश आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।